0: चिंतन तो मनुष्य एकांत में मन के गहरे पर्दे में छिपकर ही करता है, किंतु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैल जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे, भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए। उसके बीजों का वपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए, आपका जीवन विचारमय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपकी दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गीची कनिक के साथ। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2026 की सितंबर महीने की 19 तारीख है और दिन है शनिवार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण एफएम के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और दोस्तों, इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा से।

श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। गालो बोली में समाचार आप सुन पाएंगे 6:40 पर। कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रसारित होगा 6:45 पर।

7:10 पर प्रसारित होगा आपटानी बोली में समाचार। 7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कार्यक्रम सदाबहार प्रसारित होगा 7:40 पर।

8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

9:10 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पेशल सीरीज। 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। दस बजकर दस मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप एक बार फिर से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेज सफर में पेश होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान की आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on this occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointment candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Court, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in this event. Representatives from state judicial academics, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on the developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
2: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
1: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was held in New Delhi yesterday. Chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, the committee was briefed by the representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Talking to the media, committee chairman Sanjay Jaiswal said the meeting was held in a cordial atmosphere and members raised several questions. Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav held a high-level meeting with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to review measures for improving air quality in 8 NCR-linked districts of the state. These include Noida, Hapur, Ghaziabad, Meerut, Bulandshahr and others. Talking to media about the meeting, the Environment Minister said the meeting discussed action plans to curb vehicular pollution, including measures concerning old vehicles, the new EV policy, electric buses, mandatory pollution certificates and aggregator vehicles. India has been ranked first in business climate among 40-plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. And that is the end of this news bulletin.
3: Shri श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यही पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

सेहत एक ऐसी दौलत है जिसे पाने के बाद ही नहीं बल्कि हर दिन संभाल कर रखना पड़ता है, और इसकी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं बल्कि छोटी छोटी हेल्दी आदतों से होती है। नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी गीची कनिक। और दोस्तों, सुबह के इस खूबसूरत वक्त में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से अक्सर हम एक्सरसाइज को पोस्टपोन करते रहते हैं। कभी टाइम नहीं मिलता, कभी एनर्जी नहीं होती और कभी हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज के लिए जिम जाना ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ हैवी वर्कआउट या जिम में घंटों एक्सरसाइज करना नहीं होता। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा या लाइट बॉडी वेट एक्सरसाइज भी फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि हम अपने बॉडी को रेगुलर मूवमेंट दें। और जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर एक्सरसाइज को सिर्फ वेट लॉस के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का पर्पस सिर्फ वेट कम करना नहीं है बल्कि रेगुलर मूवमेंट से हम अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और ओवरऑल फिटनेस को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका दिन मोस्टली सिटिंग में गुजरता है, चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या घर पर, देन कंटिन्यूसली कई घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा वॉक करना भी बॉडी को स्ट्रेच करना यूजफुल हो सकता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हेल्थ टिप की। तो दोस्तों, अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट रेगुलरली स्किप कर देते हैं तो अपनी रूटीन को एक बार जरूर ऑब्जर्व कीजिए। ब्रेकफास्ट को अननेसेसरीली हैवी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस और न्यूट्रिशियस मील लेना इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर के सोर्सेज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एग्स, दाल, स्प्राउट्स, कर्ड, ओट्स, फ्रूट्स या होल ग्रेन फ्रूट्स, अपनी डाइट्री नीड्स के अकॉर्डिंग। जी दोस्तों, सिर्फ चाय और बिस्किट को ब्रेकफास्ट बना लेना एक रेगुलर हैबिट के तौर पर आइडियल नहीं है। बॉडी को दिन की एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और दोस्तों, हेल्थ की बात हो और स्लीप का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉपर स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। लेट नाइट तक फोन स्क्रॉल करना, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम और इरेगुलर स्लीपिंग स्केड्यूल हमारी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोने और उठने का टाइम जितना पॉसिबल हो रेगुलर रहे। जी हाँ दोस्तों, सोने से पहले थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना, रूम को कंफर्टेबल रखना और माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ क्वाइट टाइम देना बेड टाइम रूटीन को बेटर बनाने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, आज की बातों से एक सिंपल सी बात याद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल कोई एक दिन का चैलेंज नहीं बल्कि डेली रूटीन का पार्ट है। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर स्लीप और अपने बॉडी को रेस्ट देना, ये छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट डिफरेंस ला सकती है। और हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने के लिए किसी परफेक्ट डेट का होना जरूरी नहीं है। जब आप रेडी है वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव टॉट के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। अपना ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए और अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आइए हमेशा की तरह आपको कार्यक्रम सुबह सवेरे के अंत में सुनवाते हैं कुछ सुकून भरे गीतों को।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुन पाएंगे आपातानी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी और कुछ नगमे। चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट से, यानी आज का इतिहास से। सन 1893 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला स्वशासित देश बना। सन 1936 में आज ही के दिन हिंदुस्तानी सशस्त्र संगीत का महान विद्वान विष्णु नारायण भटखंडे का निधन हुआ था। सन 1960 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी लागू हुई, जिसके तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। सन 1965 में आज के दिन भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था, जिन्होंने अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है।

सन 1965 में आज के दिन गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय मेहता का निधन हुआ था। सन 2007 में आज के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह ने T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर इतिहास रचा और मात्र 12 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया।

दोस्तों आइए इस खूबसूरत गीत के बाद अब रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से पीएम 28 रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार

में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती किए गए युवाओं को 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी भी सभा को संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल है। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइंस है गवर्नमेंट। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अन्या ने कल ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने रणनीतिक योजना और नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी विकास और राज्य में टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए मार्ग पर व्यापक चर्चा की। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश, जो विशाल प्राकृतिक संसदों, समृद्ध जनजातियों विरासत और एक सीमावर्ती राज्य के रूप में रणनीतिक महत्व से संपन्न है, जो विकास समाधानों की आवश्यकता है, जो अभिनव और क्षेत्र विकसित दोनों है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग दीर्घकालिक दृष्टि, दाता संचालित नीति मार्गदर्शन और राज्य के अद्वितीय भूगोल, परिस्थिति, धन और सामाजिक सांस्कृतिक विदाता के अनुरूप सक्षम आधारित योजना प्रदान करके एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के समर्थन से अरुणाचल प्रदेश की विकास अरुणाचल और विकास भारत @2047 के लक्ष्यों की दिशा में यात्रा मजबूत होगी। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से जीरो रिव्यू मीटिंग ऑन द विकसित भारत। राज्यसभा सदस्य ताई तागत ने निचले सुबनसिरी जिले प्रशासन से आग्रह किया है कि वो हर परियोजना के केंद्र में सामुदायिक जरूरतों को बनाए रखे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास लाभ हर घर तक सीधा पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को विकसित भारत पहल पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उपायुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ स्थानीय प्रशासनिक प्रयासों और सुनिश्चित करने के लिए विभागीय प्रमुखों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को एक साथ लाया गया। दोस्तों, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों में आज बस इतना ही। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक प्यार भरा नगमा।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।

0: HIV की जांच कराएं। समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
0: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: Ale manele ma aku HIV oiloke yonam chonam la aneloke kulo aduku alabim palinduku aberitola lako berdungla acin ugumala donang tengnam loke so HIV si ninga lagi duba chance maka ala bimpa linduku holaga berbenu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga alebe nichiko hospital lo check laka gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka so gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan loke bimpa linduku.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन बोली में समाचार। आपको बता दूं, तागिन श्रोताओं के आगे की कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सदाबहार का।

सुबह की धूप लेकर आई है एक नई ताजगी। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सुबह के साथ जान लेते हैं मौसम का हाल। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी गीची कनिक। दोस्तों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज का मौसम का हाल। ईटानगर में इस वक्त मौसम साफ और धूप वाला है। टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 31 डिग्री और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन की शुरुआत भले ही धूप के साथ हो रही है, लेकिन 10 बजे के आसपास गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। IMD के फोरकास्ट में आज ईटानगर में एक दो बार रेन या थंडरस्टॉर्म की पॉसिबिलिटी बताई गई है। हवा की रफ्तार फिलहाल लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ह्यूमिडिटी 77% है और एयर क्वालिटी भी गुड कैटेगरी में है। तो दोस्तों, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, धूप के साथ साथ बदलते मौसम को भी ध्यान

रखिए और जरूरत लगे तो छाता साथ रखना ना भूलिए। इसी के साथ ही दोस्तों सदाबहार कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है कुछ सदाबहार गीतों का आनंद लेने का।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण FM 103.1 MHz के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती

0: जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
4: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
3: गैलेक्सी आई के CEO सुयश सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
4: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
6: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द है, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या। दैनिक

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर का।
1: हेलो ईटानगर।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर, आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक के साथ। और श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर पर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी से भरी हुई बातें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो लगभग हर घर की रसोई में मिल ही जाती है और जो खाने में भी टेस्टी होती है और सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दही की। दोस्तों, दही सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारी सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में एक कटोरी दही खाने से शरीर को ठंडक भी मिलती है और पेट भी हल्का और फ्रेश महसूस करता है। तो दोस्तों, आज के इस हेलो ईटानगर कार्यक्रम के एपिसोड में हम जानेंगे दही के कुछ खास फायदे, दही खाने का सही समय क्या होता है और कैसे दही हमारी सेहत को मजबूत बनाने में मदद करती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दही बनता कैसे है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, दही दूध से ही तैयार किया जाता है। जब गर्म दूध में थोड़ा सा पुराना दही मिलाया जाता है और उसे कुछ घंटों के लिए रखा जाता है, तब दूध जमकर दही बन जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, दही में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स। दोस्तों, ये सभी तत्व हमारे शरीर को मजबूत और सेहतमंद बनाने में मदद करते हैं। अब अगर बात करें दही के फायदों की, तो सबसे पहला फायदा है पेट और डाइजेशन के लिए। जय दोस्तों, बहुत बार हम लोग बाहर का खाना या ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खा लेते हैं, जिससे पेट में हैवीनेस या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में अगर खाने के साथ थोड़ा सा दही खाया जाए तो डाइजेशन को बेटर बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा दही हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। दही में कैल्शियम की मात्रा होती है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। दही का एक और फायदा है कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। जी दोस्तों, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की वो शक्ति जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और दोस्तों, गर्मी के दिनों में दही का सेवन और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। दही खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और बॉडी फ्रेश महसूस करती है। इसी वजह से कई लोग गर्मी के मौसम में लस्सी या छाछ पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, दही सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि स्किन और हेयर केयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग दही का फेस पैक बनाकर लगाते हैं जिससे स्किन सॉफ्ट और फ्रेश लगती है। इसी तरह दही को बालों में लगाने से बाल भी मुलायम और चमकदार बन सकते हैं। श्रोताओं, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे देश में कई जगह किसी शुभ काम से पहले दही और चीनी खाने की परंपरा भी है। जी दोस्तों, लोग मानते हैं कि दही और चीनी खाकर घर से निकलने शुभ होता है और काम में सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है कि दही का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी भी चीज का सेवन ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो अपनी रोजाना की डाइट में एक कटोरी दही जरूर शामिल करिए। ये छोटी सी आदत आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ। इसी के साथ ही आपको हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गीतों को।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से।
1: श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बाद में श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के शीघ्र पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 5 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और निशानेबाजी में मनु भाकर भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on this occasion. More on this from our correspondent.
1: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academics, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities and state wetland authorities will attend the conference. The conference will provide a platform to discuss key environmental and climate challenges. These include gaps in policy formulation, implementation and enforcement. The conference will also explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The CEPA is expected to create new opportunities in trade in goods and services, investment and other areas of economic cooperation. In a social media post, Mr. Goyal expressed confidence that an early conclusion of the CEPA would help realize the shared vision of significantly increasing bilateral trade and further deepen the India-Canada economic partnership for mutual benefit. President Donald Trump has signed into a law a sweeping sanctions package targeting Russian officials and key pillars of its economy that is meant to punish and pressure Moscow for its ongoing war against Ukraine. In the works for more than a year, the bill was passed earlier with large bipartisan margins, 86-11 in the Senate and 262-159 in the House. It is meant to starve Russian President Vladimir Putin of the resources Moscow needs to continue its war in Ukraine after invading its neighbor more than 4 years ago. It also directs Trump to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil or natural gas, with an exception for countries that import less than 15% of Russia's natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports. U.S. President Donald Trump said that the United States has reached a deal with Denmark to strengthen the American military presence in Greenland, ending months of tension over his repeated calls to acquire the Arctic island. The agreement leaves Greenland under Denmark's sovereignty while giving the U.S. what Trump described as a larger security role. In a social media post, Trump said the agreement gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of U.S. concerns. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held today. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from today until 4th of next month. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। अब आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम। ये विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

0: तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया. और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं.
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया
0: हाँ
1: कि आप इतनी जगह गए
0: या
1: तो उन्होंने आपको सुना. और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई
0: या
1: आता है वे उनको सुनते हैं,
0: या
1: समझते हैं
0: या
1: और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं.
0: या
1: और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं. सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है. आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट. सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है. नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी. इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है. यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें. मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iCOT कर्मयोगी. इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं. अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iCOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं. ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं. प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं. अब तक iCOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है. प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं. सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iCOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं. मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं. प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है. 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है.
2: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं. उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के. तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ. तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया. मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की. मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल. और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े. तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो. तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं. तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं. और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाब दी या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है. और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट, तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
2: ये उनकी खासियत है. मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
3: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है। इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा

0: राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग-अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
2: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में है, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं। उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती है उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया। तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ। तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हुआ है।
1: बिल्कुल, और जैसे हमने हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
3: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं आप प्रगति का।

0: देख लीजिए,
1: जी
0: आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है,
1: जी
0: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
1: बिल्कुल
0: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा, जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी
0: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है।
1: जी जी
0: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल
0: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है
1: जी
0: वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल
0: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया,
1: बिल्कुल
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि कहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115, उनमें बदलाव लाना है।
1: जी।
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया, और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे। तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो इनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इम्प्रूवमेंट आया, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इम्प्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियो स्पेशल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है देश।
1: बिल्कुल। तो ये जो नजरिया है, मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
0: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूँ, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
0: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
0: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में, मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी जी,
0: तो वो भी एक अलग से ये थी। तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल।
0: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
0: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना।

0: अवश्य।
1: तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया, पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे। पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए, और ये बहुत मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
0: जी आप बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
2: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनामिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए। तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं कर, ऐसे थोड़ी होता। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता सुरक्षा इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
0: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
1: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे, और वो ना चाइना के साथ बैठते थे ना रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाए। तो हमने करीब 350 मीटिंग्स ही हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप, और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं, वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर

0: रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है. तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया. और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए.
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है. और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है. केतकर जी,
2: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा. G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए. ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा. मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो. भारत आज हर जगह टेबल पर है. G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है. और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं. भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं.
1: बिल्कुल,
2: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं. तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है. वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है. वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा. तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है.
1: बिल्कुल. और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047. और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक की हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए. और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे
1: जी.
0: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले. और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए. तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है. क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक.
1: बिल्कुल सही कहा. बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उस नागरिकों की जरूरतों को कितनी अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है. अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक. इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.

0: श्रोता दोस्तों, आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधान को अपने दल का समर्थन देने की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि प्रधान के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रधान का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। ये सर्वेक्षण विदेश में कारोबार करने के लिए स्वीडन की कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। जापान के आईजी नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोह स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

हर गीत के पीछे होती है एक हर गीत के पीछे होती है एक कहानी, कभी यादों की कभी अपनों की निशानी। और जब वही गीत आपकी फरमाइश पर बजता है तो उसकी मिठास और भी बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आप बने हुए हैं हमारे साथ यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां आपकी फरमाइश आपके अपनों के नाम और आपके पसंदीदा गीतों का होता है एक खूबसूरत संगम। चलिए दोस्तों, हमारे आज के पहले गीत की फरमाइश भेजी है गोप परिवार ने झारखंड से। आइए दोस्तों, गोप परिवार की इस फरमाइश को पेश करते हैं। चलिए सुनते हैं उनका पसंदीदा गीत।

0: चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए बढ़ते हैं अगले सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है सुनीता बसुमतारी ने, और उन्हें सुनना है फिल्म तुमसा नहीं देखा का एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: सारेगामा कारवां 2.0।

दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो भेजी है रोमेश पत्रो, रुनु पत्रो और लक्की ने घोलाघाट आसाम से। दोस्तों उन्होंने अपनी इस फरमाइश को डेडिकेट किया है अपने खास दोस्तों अमल, बिमल, भाईकोन, देवाशीष, हितेंद्र, जोगेंद्र, सोनाली, अंजलि और सुनीता के नाम। दोस्ती का रिश्ता वैसे तो लफ्जों का मोहताज नहीं होता, लेकिन एक पसंदीदा गीत के जरिए अपनों को याद करना उस रिश्ते को और भी खास बना देता है। तो रोमेश पत्रो, रुन्नू पत्रो और लकी जी की तरफ से आइए उनके दोस्तों के नाम पे सुनते हैं इस गीत को।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और आपको बता दूं, ये फरमाइश भेजी है जोगेंद्र रोंगपी, डोरमकिरी रोंगपी और सोनाली इंटीपी ने। दोस्तों उन्होंने इस गीत को डेडिकेट किया है अपने तमाम दोस्तों और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के सभी श्रोताओं के नाम। और आपको बता दूं, इस फरमाइश की एक खास वजह भी है। दोस्तों आज लकी अली का बर्थडे है और उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उनके गीतों को याद करते हुए ये फरमाइश भेजी गई है। तो आइए दोस्तों उनकी फरमाइश में आनंद लेते हैं इस गीत का।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है कुमार ने, और उन्होंने इस गीत को डेडिकेट किया है उनके सभी दोस्तों के नाम, जिनके नाम है भाईकॉन मुंडा, अमल बसुमतरी, रमेश पत्रो, जोगेंद्र रोंगपी, माइनू राबा, अंजलि बसुमतरी, हितेंद्र दास, देवाशीष हजारिका। आइए उनकी फरमाइश में सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर जो भेजी है अमल बसमतरी ने। आपको बता दूं अमल जी ने इस गीत को डेडिकेट किया है अपने खास दोस्तों रमेश, लकी, देवाशीष और सुनीता के नाम। तो अमल बसमतरी की तरफ से उनके प्यारे दोस्तों के लिए पेश है ये खूबसूरत से गीत दोस्ती के लिए, इस प्यारे रिश्ते को और खास बनाते हुए। लीजिए सुनिए इस गीत को।
1: आँखों में बस

दोस्तों, और अब वक्त है एक ऐसी फरमाइश का जिसके साथ जुड़ी है कुछ गहरी यादें और जज्बात। जी हाँ दोस्तों, ये फरमाइश भेजी है हेमंत गोगोई ने डिब्रूगढ़ आसाम से, और हेमंत जी ने इस गीत को डेडिकेट किया है सभी आरजेस और जुबिन गर्ग के तमाम फैंस और फ्रेंड्स के नाम। दोस्तों, आज का दिन जुबिन दा को चाहने वाले हर शख्स के लिए उनकी यादों को फिर से महसूस करने का दिन है। कहते हैं, इंसान हमसे दूर हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज, उसके गीत और उससे जुड़ी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। जुबिन गर्ग की आवाज ने न जाने कितने दिलों को छुआ, और उनके गीत आज भी उनकी यादों को हमारे बीच जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, उन्हें याद करते हुए हेमंत जी ने ये खास फरमाइश उन सभी के नाम की है जो जुबिन दा को दिल से चाहते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है गिरेन टेरोन ने कार्बी अंगलोंग डोला मारा से, और उन्होंने फिल्म दो दिलों की दास्ता फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत की फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता दोस्तों, हमें खेद है कि समय के कमी के चलते कुछ श्रोताओं के सॉन्ग रिक्वेस्ट को हम प्ले नहीं कर पाए हैं, पर आप बिल्कुल भी निराश ना हो। हमारी कोशिश रहेगी कि कल सुबह की रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में उसे जरूर बजाया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारे पहले प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे की कार्यक्रमों के सफर में यानी हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आरजे नूरी। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। पहली बार जिला स्तर पर श्रम बाजार के विवरण जारी किए गए हैं। वर्ष 2025-2026 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। विदेश अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने की बैठक की। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवनीतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागया में हो रही है। मनु भाकर और तेजेंद्र पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो है, नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फेज नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की, जहाँ पर बनती है वो मूवीज जो करती है आपको रूटीन, आपके इमोशंस की रोल कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, इंस्पायर करती हैं और कभी कभी दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा भी जगाती हैं, देश के लिए कुछ कुछ दिखाने का जज्बा। So guys, let's dive into the vibrant world of Bollywood, जिसके लेटेस्ट अपडेट के साथ सब होंगे हैपनिंग गाने। इसलिए लॉग इन करें आप हमारे रेडियो ऐप पे, चलाएं रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज कहां पर, आकाशवाणी रेनबो पर, जहां पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्विस्ट, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड मॉर्निंग।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: जो मिला उसका शुक्रिया अदा करो और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। दोस्तों, इस खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज की दूसरी प्रसारण सभा में। मैं हूं आप सबके साथ आरजे न्यूरी और आप सुन रहे थे कुछ पल पहले आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सुनने के बाद अब वक्त हो चला है आप सबके साथ चलने का फिर से सुनहरे सफर पर, यानी कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आकाशवाणी के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज एफएम पर। हम सफर को आगे जारी रखें उससे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे आरजे मामिन सुम्बी का, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपना प्रसारण संपन्न कर स्टूडियो की जिम्मेदारी अब हमें सौंप दी है। मैं हूं आप सबके साथ अपनी आरजे नूरी और मेरे साथ है प्रसारण अधिकारी गह रहते तथा तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तो आइए आज के संगीतमय सफर की शुरूआत करते हैं संगीत की खूबसूरत फुहारों के साथ। हमारा पहला पड़ाव फिल्मी लहर। दोस्तों, आज की फिल्मी लहर कुछ ऐसी धुनों से सजेगी जिनमें सुनाई देंगी प्रकृति की सुंदरता और उसका मधुर संगीत। कभी बारिश के रिमझिम फुहारे, कभी बहती नदी और झरनों की कलकल, कभी पेड़ों की सरसराती शाखाएं, तो कभी पक्षियों की चहचहाट और हवाओं की मीठी छुअन, और फिर फूलों की खुशबू, कलियों की मुस्कान और प्रकृति के उन अनगिनत रंगों की बात जिन्हें फिल्मी गीतों ने अपनी धुनों में बड़ी खूबसूरती से संजोया है। तो कुछ पल के लिए शहर की भागदौड़ से दूर चलिए प्रकृति के इन्हीं खूबसूरत नजारों के बीच संगीत की इन मधुर धुनों के साथ। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि इस चैनल में हम करते हैं आपसे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मी लहर इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, प्रकृति की खूबसूरती का जिक्र हो और पहाड़ों का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, हरी भरी वादियां, ठंडी हवाएं और दूर तक फैला आसमान, इन सब में एक ऐसी खामोश खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी मन को छू जाती है। और जब यही खूबसूरती संगीत में ढलती है तो एहसास और भी खास हो जाता है। फिल्म का ये खूबसूरत गीत हुस्न पहाड़ों का, जिस फिल्म ने सारी जो चीजें थी, जो लोगों को लगता था कि हद यहां है, सारी हदों को पार करने वाली ये खूबसूरत फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई। इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सब तक पहुंचा रहे थे आकाशवाणी के FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण FM पर, कार्यक्रम फिल्मी लहर में। तो दोस्तों, आइए कुछ पल सुरों के साथ, पहाड़ों और नदियों और सूरज और चांद तारों के साथ चलते हैं सफर पर। सुनते हैं अगला गीत मेरे साथ, यानी RJ नरी के साथ, ये खूबसूरत अगला गीत।

0: click on the bell icon to get regular updates from me.
1: श्रोता दोस्तों, अभिजीत की आवाज ने इस गीत की मिठास को कुछ अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया है और कुछ अलग ही महसूस होता है। कभी कभी गीत हमें याद दिलाता है कि खुशियां बहुत बड़ी चीजों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे एहसासों में छिपी होती है जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। तो श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आप सभी के बहुत ही चहेते चैनल अरुणाचल की अपनी आवाज आकाशवाणी के FM 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण FM पर कार्यक्रम फिल्मी लहर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। और ये बेहद ही खूबसूरत सफर फिल्मी लहर का है जहां हम आज बातें करेंगे फिल्मी सॉन्ग्स में किस तरह से नेचर को अपने अलग ही अंदाज में पेश किया है। बारिश की रिमझिम, बहते झरनों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और हवाओं की ताजगी, इन सबको अपने गीतों में समेटे कुछ और मधुर नगमे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये है आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण FM। और अब चांद तारों से जरा नीचे उतरते हैं और चल पड़ते हैं प्रकृति की उसी दुनिया में जहां आसमान में उड़ते पंछी अपनी ही धुन में मस्त नजर आते हैं। पंखों को फैलाकर खुले आसमान में उड़ते ये पंछी मानो हमें भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी में कभी कभी बस खुलकर जीना और अपने सपनों की ओर उड़ते रहना चाहिए। फिल्म कोई मिल गया का ये खूबसूरत गीत जिसमें प्रकृति मासूमियत और उड़ान का एक प्यारा सा एहसास है। तो आइए सुनते हैं इन पंछियों को देखकर।

तो दोस्तों, फिल्मी लहर इसी खूबसूरत गीतों के साथ ही समाप्त होता है। उम्मीद है कि इन सुरीली धुनों ने आपके दिन में भी कुछ खास और कुछ खूबसूरत पल जरूर जोड़े होंगे। और अब बारी है संगीत के अलग अलग अंदाज की, यानी कि हमारी द्वितीय प्रसारण सभा में प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। तो तैयार हो जाए कुछ चुनिंदा वेस्टर्न मेलोडीज खूबसूरत सुरों और यादगार धुनों के साथ एक नए संगीतमय सफर के लिए। चलिए सुनते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर वेस्टर्न मेलोडीज।

0: That is all for today, listeners. I hope you enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics. In New Delhi today, Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
2: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. Jabki aitihasik sachchai ye hai, aaj bhi प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
3: Prime Minister Modi said India is working with the rest of the world and setting new standards for environmental protection through initiatives such as the International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance and Mission Life. Mr. Modi said that over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment. The Prime Minister said India's major focus has been on renewable energy and played a significant role in environmental protection. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More from our correspondent.
4: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be the India's flag bearers at the opening ceremony. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu, Puducherry. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुन रहे थे। तो देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं स्टूडियोज में आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। और आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी प्रसारण सभा में मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, अगला कार्यक्रम जो हम आपके लिए पेश करेंगे वो बहुत ही खास है, क्योंकि वो हम पेश करते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए यानी कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। दोस्तों, अब भले ही वो उम्र के उस दलान पर पहुंचे हैं जहां न शारीरिक ताकत है न मानसिक ताकत है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी में मजबूती से खड़े रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने ही हमें ये सिखाया कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उनमें जो मुश्किलें हैं वो तो जिंदगी का हिस्सा है, और वही मुश्किलें और उसको पार करने की जो जद्दोजहद है उसी में ही बहुत खूबसूरती है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे जिंदगी को बनाने वाले यानी कि हमारे लिए वो शिल्पकार हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आज हम उनका साथ कैसे छोड़ दें जब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें सहारे की जरूरत है। हर तरह से शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूप से उनके साथ हमारा रहना और उनके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तब उनको कैसे हम छोड़ दें अकेले। हमारी कोशिश है कि गानों के माध्यम से उनको ये याद दिला दें कि हम अभी भी प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, और उनके बिना हमारी जिंदगियां अधूरी रहती। उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके ज्ञान के बिना और उनके प्यार और मोहब्बत और परवरिश के बिना हम जहां पहुंचे हैं शायद ही पहुंच पाते। बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ देने का मन करता है, और इसी भावना के साथ हमने सजाया है गीतों का गुलदस्ता, यादों की बारात, सॉन्ग्स फॉर सीनियर सिटीजन्स आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस वक्त अगर कोई ऐसे बुजुर्ग सुन रहे हैं तो आपको याद दिला दो कि आपने जो हमें हमारे लिए किया है हमेशा उसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं खूबसूरत गीतों के गुलदस्ते के साथ, जिन गानों को सुनकर हमारे बुजुर्गों को अपनी जवानी, अपना बचपन या वो सुनहरा पल जरूर याद आएगा जब वो सशक्त थे, ताकतवर थे और दिल में उमंगे थी। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों आज के जमाने में आपके पास सब कुछ है, बस उंगली दबाते ही हर चीज आपके सामने आ जाता है और जिंदगी इतनी आसान हो गई है कि अगर हम किसी बुजुर्ग से पूछें कि इतनी सहूलियतों के बीच क्या कोई कमी सा महसूस होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में आपको सब कुछ मिल गया है, तो आज अगर किसी बुजुर्ग से ये पूछ लिया जाए कि आपकी जिंदगी में अब और क्या चाहिए, तो शायद उनका जवाब बहुत लंबा नहीं, बस इतना कहेंगे अपनों का साथ चाहिए। कुछ पल साथ बैठकर हंसने और बतियाने के चाहिए, कोई हमारी बात सुने, हमारे बीते दिनों के किस्से सुने, बस इतना ही तो चाहिए। उन्हें या शायद महंगे तोहफे की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए तो बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपनापन और एक एहसास की कि आज भी उनकी जरूरत है, आज भी उनकी बातें मायने रखती है। कभी उनके पास बैठकर देखिएगा, शायद उनकी आंखों में आपको अपना ही बचपन दिखाई दे जाए। और सच तो यही है, उम्र बढ़ने के साथ इंसान को चीजों से ज्यादा रिश्तों की गर्माहट की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम हमने जब सजाए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, बस हमारे बुजुर्गों को थोड़ा सा समय चाहिए, उनके साथ हंसते खिलते कुछ पल गुजारने की बस वही चाहत रखते हैं। कभी उनके पास बैठकर देखिएगा, आपको महसूस होगा कि उनको महंगे तोहफों की नहीं, बस कि आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वक्त जो भी सुन रहे हैं हमें आकाशवाणी के रेनेफ 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम यादों की बारात सॉन्ग्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स को, तो जरूर अपने बुजुर्गों के साथ कुछ पल जरूर बिताएगा। महंगे तोहफों की जरूरत नहीं उनको, आपका थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, ताकि वो अपनी बात कह सके और उन्हें महसूस हो सके कि उनकी जरूरत अभी भी है। आकाशवाणी की ओरन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमारे धरोहर है। तो चलिए उनकी शान में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, कभी कभी बीते हुए समय को याद करने के लिए किसी तस्वीर की जरूरत नहीं होती, बस कोई पुराना गीत सुनाई दे जाए और यादों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दोस्तों, आज की ये संगीत यात्रा समर्पित है हमारे परिवार के उन बुजुर्गों के नाम जिनके अनुभवों में एक पुराना और पूरा जमाना बसा है। वो जमाना जहां शामें परिवार के साथ गुजरती थी, जहां बातचीत के लिए समय निकाला जाता था और रेडियो की आवाज घर के माहौल का हिस्सा हुआ करती थी। उनकी यादों में से पुराने गीत नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, त्योहारों की रौनक, बचपन की शरारतें और जीवन के अनगिनत अनुभव छुपे हैं। तो आइए आज कुछ पल के लिए वर्तमान की तेज रफ्तार से दूर चलते हैं और उन सुनहरी यादों के साथ बैठते हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग आज भी अपने दिल में संजोए हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की बारात, सॉन्ग्स फॉर द सीनियर सिटीजन। सो मेरे साथ ही यानी आरजे नूरी के साथ आप सभी के बहुत ही चहेते चैनल अरुणाचल की अपनी आवाज आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, इस सफर में हम ऐसे गीत पहुंचा रहे हैं आप तक जिन्हें सुनकर हमारे जो बुजुर्ग हैं या वो ऐसे लोग जो

उम्र के उस ढलान पर है जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समाज को दे गया। उनके लिए सजाया गया ये फूलों का यानी कि गुलों का गुलदस्ता, गानों का गुलदस्ता आप तक पहुंच रही है। लीजिए सुनिए एक और खूबसूरत गीत उनकी शान में।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी यादों की बारात बुजुर्गों के नाम अपनी इस खूबसूरत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। आज के इन गीतों के साथ हमने सिर्फ अपनी उनकी पुरानी यादों को ताजा नहीं किया, बल्कि उन लोगों की को भी याद किया जिन्होंने अपने अनुभवों और स्नेह से हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाया। दोस्तों, याद रखिए, हमारी जिंदगी में हमारे बुजुर्ग जो है हमारे सिर्फ अतीत का हिस्सा भर नहीं है, वे हमारे वर्तमान की ताकत और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुभव की अमूल्य विरासत है। उनकी कहानियां सुनिए, उनके अनुभवों को सहजिए और उनके साथ थोड़ा समय जरूर बिताइए, क्योंकि कुछ यादें दोबारा बनाई नहीं जा सकती, उन्हें बस प्यार से संजोया जा सकता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ कार्यक्रम यादों की बारात बुजुर्गों के नाम से। दोस्तों, अगला कार्यक्रम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला, तो बने रहिए आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और करते रहे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुणा FM में कार्यक्रम फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना। श्रोताओं, 24 से लेकर 26 सितंबर 2026 के बीच ईटानगर और नाहरलगुन के पास अस्पतालों में भूकंप एवं बहुआपदा आपातकालीन स्थिति पर आधारित मॉक एक्सरसाइज यानी आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पतालों की आपदा तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा विभिन्न बचाव एवं राहत एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत करना है। अभ्यास का कार्यक्रम इस प्रकार है। 24 सितंबर 2026 सुबह लगभग 10 बजे आरके मिशन अस्पताल, दोपहर लगभग 2 बजे हीमा अस्पताल, 25 सितंबर 2026 सुबह लगभग 10 बजे हरमिन अस्पताल, दोपहर लगभग 2 बजे नीवा अस्पताल और 26 सितंबर 2026 को सुबह लगभग 11 बजे TRISHMS नाहरलगुन। इस अभ्यास के दौरान भूकंप, बड़ी संख्या में घायल लोगों की स्थिति, आग लगने की घटना, खोज एवं बचाव, सुरक्षित निकासी तथा सामूहिक हताहत प्रबंधन जैसी आपातकालीन परिस्थितियों का कृत्रिम रूप में अभ्यास किया जाएगा। इसमें NDRF, SDRF, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भाग लेंगी। यह पूरा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में आयोजित किया जाएगा। आम जनता, मरीजों एवं उनके परिवारजनों के लिए विशेष सूचना। यदि अभ्यास के दौरान आपको सायरन, बचाव दल, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन गतिविधियां दिखाई दे तो कृपया घबराए नहीं। यह एक पूर्व नियोजित मॉक एक्सरसाइज है, वास्तविक आपदा नहीं। मरीजों और उनके परिजनों से अनुरोध है कि वे अस्पताल प्रशासन तथा अभ्यास में शामिल अधिकारियों एवं बचाव दलों के निर्देशों का पालन करें और उनके साथ सहयोग करें। याद रखिए, आपदा आने का इंतजार नहीं, आपदा से निपटने की तैयारी जरूरी है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना है। जनहित में जारी अपना आपदा प्रबंधन विभाग अरुणाचल प्रदेश, अरुण FM आकाशवाणी ईटानगर की ओर से आप सभी से यही अनुरोध है कि सुरक्षित रहें, सजग रहें और सहयोग करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम गीतमाला में, हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए सजाया गया दैनिक कार्यक्रम में, और सुनते रहे कार्यक्रम के साथ साथ इसी तरह के सूचनाएं जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: श्रोता दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम में फौजी भाइयों का गीतमाला यही पे समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। हम लौट कर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक फ्रॉम 60s to 80s के साथ कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
2: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements paved the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of countries' youth have won the trust of the entire world.
2: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
3: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with the greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the conference of the parties 21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the एनवायरमेंट।
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
3: On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags, and other essential supplies. This is the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, India continues to support Nepal's recovery. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah today said that disaster early warning systems will be implemented on the highest priority following devastating floods in the Bhote Koshi and Trishuli river basins that caused extensive loss of lives and infrastructure damage. The United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. The experts called for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture, or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. Assam is remembering iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary today. The state has also been observing a 3-day Zubeen Divas since September 17th. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, समाचार के बाद अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे साथ यानी RJ नूरी के साथ। दोस्तों, वक्त है 1960 से लेकर 80s के कुछ हसीन नगमों को आप तक पहुंचाने का इस सेगमेंट के माध्यम से, जहां हम आपके लिए प्ले करेंगे कुछ ऐसे हसीन नगमे जो समय के पड़े हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। पहला गीत है अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, फिल्म बेटी बेटे से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने।

24 से लेकर 26 सितंबर 2026 के बीच ईटानगर और नाहरलगुन के 5 अस्पतालों में भूकंप एवं बहुआपदा आपातकालीन स्थिति पर आधारित अस्पताल मॉक एक्सरसाइज यानी आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पतालों की आपदा तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा विभिन्न बचाव एवं राहत एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत करना है। अभ्यास का कार्यक्रम इस प्रकार है। 24 सितंबर 2026 सुबह लगभग 10 बजे आरके मिशन अस्पताल, दोपहर लगभग 2 बजे हीमा अस्पताल, 25 सितंबर 2026 सुबह लगभग 10 बजे हरमिन अस्पताल, दोपहर लगभग 2 बजे नीबा अस्पताल, 26 सितंबर 2026 सुबह लगभग 11 बजे ट्रीम्स नाहरलगुन। दोस्तों, इस अभ्यास के दौरान भूकंप, बड़ी संख्या में घायल लोगों की स्थिति, आग लगने की घटना, खोज एवं बचाव, सुरक्षित निकासी तथा सामूहिक हताहत प्रबंधन जैसी आपातकालीन परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से अभ्यास किया जाएगा। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भाग लेंगी। यह पूरा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में आयोजित किया जाएगा। आम जनता, मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए विशेष सूचना। यदि अभ्यास के दौरान आपको सायरन, बचाव दल, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन गतिविधियां दिखाई दे तो कृपया घबराए नहीं। यह एक पूर्व नियोजित मॉक एक्सरसाइज है, वास्तविक आपदा नहीं। मरीजों और उनके परिजनों से अनुरोध है कि वे अस्पताल प्रशासन तथा अभ्यास में शामिल अधिकारियों एवं बचाव दलों के निर्देशों का पालन करें और उनके साथ पूरा सहयोग करें। याद रखिए, आपदा आने का इंतजार नहीं, आपदा से निपटने की तैयारी जरूरी है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना है। जनहित में जारी आपदा प्रबंधन विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार। अरुण एफएम आकाशवाणी ईटानगर की ओर से आप सभी से अनुरोध है, सुरक्षित रहे, सजग रहे और सहयोग करें।

दोस्तों, क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s का कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है, लेकिन गीतों का सफर जारी रहेगा। बस थोड़ा सा धुन बदलेंगे और हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे और नई धुनों से सजाएंगे ये महफिल आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं. मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का.
0: He said the government's endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth.
1: Bharat ne bite kuch varshon mein kareeb 40 deshon ke saath free trade agreement bhi kiye hain. Ye free trade agreements FTA hamare yuvaon ke liye sambhavnaon ke naye dwar bana rahe hain. Is tarah ke ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं.
0: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with the greater transparency. He said that nearly 10,96,000 appointments were made during the 10 years of the NDA government as compared to 7,22,000 appointments during UPA government through three major central recruitment agencies, Union Public Service Commission, the Staff Selection Commission and the Railway Recruitment Boards. The 20th Rozgar Mela was held at 45 locations across the country. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions.
1: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
0: He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule.
1: Paris mein COP21 ke dauran humne convenient action continuity for change us book ko bhi launch kiya tha. Hum duniya ko saath lekar paryavaran suraksha ke naye mapdand sthapit kar rahe hain. One sun, one world, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है.
0: Prime Minister Modi said that India is rapidly working in areas like clean mobility and green hydrogen today. He highlighted that India's wind energy capacity has witnessed 3 times growth in the last 12 years. Mr. Modi emphasized that New India is also focusing on nuclear energy generation. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said that the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. He underlined the importance of the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has also brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youths will be trained by 31st of December next year. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years of public service, marked by an unwavering commitment to the principle of seva and sushasan. Inspired by this vision of service and good governance, the government is continuously working towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. Several initiatives have been undertaken to connect the youth with nation building and provide them with opportunities to serve the country. One such initiative is the Agnipath scheme. In this special series, we look at the opportunities being provided to the youth through the Agnipath scheme. More from our correspondent.
2: The government launched the Agnipath scheme in 2022 to provide young people with an opportunity to serve the nation. Under the scheme, youth inducted into the armed forces are known as Agniveers. Agniveers serve for 4 years, during which they receive military training and gain experience in discipline and various skills. Uttarakhand has a strong military tradition, with its youth playing an important role in serving the armed forces. Young people from the state are also participating in the recruitment process under the Agnipath scheme. A large number of candidates participated in the Agniveer recruitment rally held at Banbasa in Champawat in February and March this year. After completing 4 years of service, up to 25% of each batch of Agniveers will be inducted into the regular cadre of the armed forces through the prescribed process. The remaining Agniveers are provided a Seva Nidhi package and a skill certificate. In Uttarakhand, a 10% horizontal reservation has been provided for ex-Agniveers in various uniformed Group C services under rules issued in 2025. These include posts in the police, fire services, prisons, forests, excise and secretariat security. Subject to the prescribed condition, ex-Agniveers are also provided relaxation in the upper age limit and exemption from the physical efficiency test. Thus, the Agnipath scheme is providing young people with an opportunity to serve the nation while gaining military training and experience. While Uttarakhand has also made provisions for employment opportunities for them after their service. Santosh Thapliyal, Akashwani News, Dehradun.
0: This is Akashwani giving you the news.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back to Midday News on Akashwani. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India continues to support Nepal's recovery. Nepal faced devastating floods last month, disrupting life and property. United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, calling for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture, or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. At least 100 Afghan students, including 20 to 40 women, are reportedly affected. They said the move could end the hopes of female Afghan students of qualifying as doctors and dentists, given the Taliban's ban on higher education and medical training for women. Assam is remembering the iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary today. Various events and programs are being organized across the state to pay tribute to the artist, whose music continues to resonate with millions of people. The state has also been observing a three-day Zubin Divas since 17th of September. Thousands of admirers have gathered at Zubin Kshetra in Sonapur near Guwahati, where the legendary singer was cremated, to offer their respects and celebrate his enduring legacy. During his 33-year musical career, Zubin Garg recorded over 40,000 songs across nearly 40 languages and dialects, reflecting his remarkable versatility and wide appeal. On to sports. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature five individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department, or IMD, has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
4: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
4: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
4: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
5: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस,
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य

0: कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उभरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालुमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नगोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, वेलकम बैक टू आकाशवाणी के FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण FM। अब वक्त हो चला है रोज की तरह सुनने का अगला कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। हाँ, वर्ष फिर से हो चला है आप सबको लिए चलने का यादों की गलियों में हिट्स ऑफ 90s के सुनहरे नगमों के साथ। चलिए शुरू करते हैं प्यारे से गीत के साथ जो आपको 90s के सुनहरे दिनों की ओर लेकर जाएगा और आप जरूर आनंद उठाएंगे इस गीत का, मुझे उम्मीद है।

दोस्तों हिट्स ऑफ 90s की शुरुआत हमने सुपर हिट सॉन्ग करिश्मा और गोविंदा की हिट जोड़ी की फिल्म हीरो नंबर वन से शुरू कर दी है। दोस्तों 90s के दिन को अगर याद करें तो 90s के दिन भी क्या दिन थे यार। वो लंबी लंबी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के दिन, घर में टेलीफोन की घंटी बजती थी और अगर दूसरी तरफ कोई अपना हो तो बात खत्म करने का मन ही नहीं करता था। घड़ी आगे बढ़ती रहती थी, घर वाले बीच बीच में याद दिलाते रहते थे कि बस करो अब बहुत देर हो गई है और किसी और का भी फोन आ सकता है, बस तुम दोनों ही नहीं हो इस दुनिया में। इस तरह के वो बेहद ही प्यारे से दिन। लेकिन बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कभी पढ़ाई की बातें, कभी दोस्तों की, कभी सपनों की और कभी बस यूं ही। और बताओ, उस एक और बताओ में पता नहीं कितनी देर निकल जाती थी। आज बातचीत के लिए हमारे पास इतने सारे जरिए हैं, लेकिन शायद उस समय बातें कम थी, वक्त ज्यादा था। और आज वक्त कम है, बातें अभी भी ज्यादा है दोस्तों। और फिर थे चिट्ठियों के दिन। कागज का एक टुकड़ा किसी अपने की पूरी दुनिया अपने साथ लेकर आता था। लिफाफा हाथ में आते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती थी, उसे खोलने की भी अपनी खुशी थी। धीरे धीरे पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना और कभी कभी उसी चिट्ठी को संभाल कर रखना और दोबारा फिर निकाल कर पढ़ना, क्योंकि वो सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं होते थे, उसमें किसी अपने का इंतजार, उसकी आवाज और उसका अपनापन कैद होता था। आज मैसेज कुछ सेकंड में पहुंच जाता है, लेकिन उस समय एक चिट्ठी पहुंचने में लगे दिन भी कितने मीठे हुआ करते थे, क्योंकि इंतजार में भी एक खूबसूरत सा एहसास होता था। और इसी एहसास को हम तरोताजा करेंगे हिट्स ऑफ 90s के सुनहरे नगमों के साथ, मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ, आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम, अरुणाचल की अपनी आवाज जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और हिट्स ऑफ 90s के गानों के माध्यम से हम पुराने, जैसे ऐसा लगता है जैसे पुराने एल्बम फिर से पलट कर उन सुनहरे दिनों को याद कर रहे हो जो हमारे सीने में कैद है। और आज वही गीतों के माध्यम से सिनेमा की तरह यानी कि चलचित्र की तरह हमारे आंखों के सामने आ जाता है। चलिए एक और यादें ताजा करते हुए सुनते हैं 90s का ये नगमा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। और हिट्स ऑफ 90s आप सुन रहे हैं अपने रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, जब बात 90s की होती है तो यादें सिर्फ गीतों और बातों की नहीं होती, हमारी जो यादें हैं वो ताजा होती है तस्वीरों की भी, वो यादों को एल्बम में कैद करने के दिन। तस्वीरें आज भी खींचते हैं, आज भी लेते हैं, लेकिन तस्वीरें आज की तरह हर पल हर जगह खींची नहीं जाती थी। दोस्तों, एक तस्वीर के पीछे एक पूरा पल हुआ करता था। और जिन लोगों ने ये जिंदगी, यानी कि वो दिन जिन्होंने देखा है, वो पूरा रिलेट कर पाएंगे। परिवार साथ बैठा है, दोस्तों का वो पूरा झुंड है, किसी पिकनिक की तस्वीर, किसी बर्थडे की, किसी छोटे से सेलिब्रेशन का, और फिर उन तस्वीरों को बड़े सलीके से एल्बम के पन्नों में सजा कर रखना। कभी कभी यूं ही एल्बम निकाल कर बैठ जाना, एक तस्वीर को यूं निहारना, किसी के चेहरे पर मुस्कुरा देना और किसी को देख कर कहना, अरे ये तो उस वक्त ली गई थी। और इसी तरह से कई सारी यादें बस एक तस्वीर से बाहर निकल कर आ जाती थी। और फिर सालों बाद जब वही एल्बम दोबारा खुलती है तो तस्वीर में सिर्फ चेहरे नहीं दिखाई देते, उन तस्वीरों के पीछे छुपी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किसी की हंसी, किसी की पुकार, किसी अपने की आवाज, उस दिन की चहल पहल, और कभी कभी एक ऐसा चेहरा भी दिखाई देता है जो आज हमारे साथ नहीं है। तब समझ आता है, हम तस्वीरें तो संभाल कर रख रहे थे लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पल संभाल कर रख रहे थे। आज तस्वीरें हजारों है लेकिन 90s की एक तस्वीर कभी कभी पूरी एक कहानी सुना देती है। और यही वजह है कि जब कोई पुराना एल्बम खुलता है तो हम सिर्फ तस्वीरें नहीं देखते, हम कुछ पल के लिए अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आते हैं। वही लोग, वही चेहरे, वही हंसी और वो हम जो उस तस्वीर में आज से कहीं ज्यादा बेफिक्र थे और चेहरे पर झुर्रियां कम थी और जिंदगी को अलग तरीके से महसूस करते थे। तो दोस्तों, लीजिए सुनिए एक और हिट्स ऑफ 90s, यानी कि एक और बेहतरीन नगमा 90s के।

श्रोता दोस्तों, हिट्स ऑफ 90s में 90s के गानों को ही नहीं सुनते बल्कि हम उन दिनों को भी याद करते हैं जब खुले मैदानों में दिल खोल कर खेलते थे। और उस वक्त ना तो स्क्रीन, ना नोटिफिकेशंस, ना ये चिंता कि कितने लाइक्स आए, बस एक बड़ा सा मैदान, कुछ दोस्त और शाम होने तक घर वापस जाने का मन ही नहीं करता था। कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी कोई ऐसा खेल जिसके नियम हर दिन बदल जाते थे। घुटनों पर लगी छोटी छोटी छोटे अगर अगले दिन की कहानी बन जाती थी। और शाम को घर से आवाज आती थी, अब घर आ जाओ सब, लेकिन हम कहते बस 5 मिनट और, है ना। और वो 5 मिनट कभी खत्म होते ही नहीं थे। शायद इसलिए आज जब बचपन की तस्वीरें देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ खेलने के दिन नहीं थे, वो बेफिक्री से जीने के दिन थे। दोस्तों, 90s की सबसे खूबसूरत बात शायद यही थी, हमारे पास चीजें कम थी, सहूलियतें कम थी, लेकिन उन चीजों से जुड़े हर एहसास बहुत बड़े थे।

एक टेलीफोन कॉल, एक चिट्ठी, एक फोटोग्राफ और एक गानों भरा कैसेट, एक दोस्त, एक शाम का खेल, छोटी छोटी चीजें थी। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े खजाने शायद इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s बहुत पसंद है, क्योंकि हिट्स ऑफ 90s में हम अपनी जिंदगी के वो सुनहरे पलों को भी आप सबके साथ ताजा करते हैं और जिन्होंने उस जमाने को जिया है वो तो रिलेट करेंगे ही, और जिन्होंने वो जिंदगी नहीं जी, वो दौर में उन्होंने अपना खूबसूरत पल नहीं बिताए, लेकिन गानों के माध्यम से और हमारे इन शेयरिंग्स के माध्यम से जरूर महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको हिट्स ऑफ 90s बेहद ही पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला नगमा हिट्स ऑफ 90s।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफ एम के मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ताई खमती श्रोताओं का कार्यक्रम। अब वक्त हो चला है मेरे सारे यानी आरजे न्यूज़ के साथ सुनने का कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स में आज बात एक ऐसी फिल्म की जिसका सफर अपने आप में किसी कहानी से कम नहीं रहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाओमी द वांचो वॉरियर की। 18 सितंबर 2026 को सिनेमा घरों में आ चुकी है। कई वजहों से यानी कि कई कारणों के चलते इस फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचने में लगभग एक दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार 18 सितंबर 2026 को फिल्म रिलीज हो गई और इसी के साथ ही वर्षों से चला आ रहा इंतजार भी खत्म हुआ। तो इतने लंबे इंतजार के बाद कैसी है नाओमी द वांचो वॉरियर, चलिए करते हैं फिल्म की बात। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की। इस मामले में फिल्म काफी प्रभावशाली है। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़, जंगल, गांव और वहां का वातावरण कैमरे के जरिए बेहद खूबसूरती से सामने आता है। और बात करें वीएफएक्स की, तो यह भी फिल्म का एक मजबूत पक्ष है। खासकर युद्ध और एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल काफी प्रभावशाली लगता है और फिल्म को एक बड़े सिनेमैटिक स्केल का एहसास देता है। लेकिन इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इस फिल्म के कलाकार। कई कलाकार ट्रेंड एक्टर्स नहीं है, कई नहीं बल्कि इस फिल्म के सारे कलाकार ट्रेंड एक्टर्स नहीं है। ये अपने सामान्य जीवन से जुड़े लोग हैं जिन्होंने निर्देशक के मार्गदर्शन में कैमरे के सामने अपने किरदार निभाए। और खास तौर पर कुछ सीनियर एक्टर्स ऐसे हैं जो हिंदी सिनेमा की दुनिया से लगभग अपरिचित हैं। इसके बावजूद उन्होंने जिस सहजता से अपने किरदारों को निभाया है, यह निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने लायक है, तारीफ काबिल है। जी हाँ दोस्तों, नाओमी फिल्म के जितने भी कलाकार से उनके लिए ये शब्द तो जरूर बनता है, हैट्स ऑफ। उनके अभिनय में शायद वह पॉलिश्ड थिएट्रिकल क्वालिटी ना हो जो हम ट्रेंड एक्टर्स में देखते हैं, लेकिन यही बात उनके परफॉर्मेंसेस को नेचुरल और ऑथेंटिक भी बनाती है। और ये बात बहुत खास है मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, जो भी हमारे दर्शक देखने जाएंगे नाओमी द वांचो वॉरियर, तो इस उम्मीद के साथ न जाएं कि वे पॉलिश्ड एक्टर्स होंगे और उनके हर एक्सप्रेशन जो है वो खास होंगे, क्योंकि ये नेचुरल एक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं। सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है इन एक्टर्स का। वे अभिनय करते हुए कम और अपने स्वाभाविक रूप में ज्यादा दिखाई देंगे और शायद यही इस फिल्म की खूबसूरती है और खास बात भी है। दोस्तों, फिल्म का एक और पहलू मुझे खास तौर पर अच्छा लगा, वो है वांचो समाज की पारंपरिक रस्मों और रिचुअल्स का नेचुरल, बहुत ही नेचुरल पोर्ट्रेयल। इन परंपराओं को केवल कहानी का हिस्सा बनाकर नहीं बल्कि बहुत सहज तरीके से कैमरे में कैद किया गया है। इससे दर्शकों को उस संस्कृति और जीवन पद्धति की एक वास्तविक झलक मिलती है। अब अगर कहानी की बात करें तो यहां कुछ और गुंजाइश महसूस होती है। फिल्म में रोमांस, सामान्य जीवन यानी कि विलेज लाइफ, फैमिली बॉन्ड्स और इमोशनल रिलेशनशिप्स को थोड़ा और स्पेस दिया जाता तो शायद दर्शकों का कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन और गहरा हो सकता था, क्योंकि फिल्म का बड़ा हिस्सा दो राइवल विलेजेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के इर्द गिर्द घूमता है। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल पोर्ट्रेयल ऑफ द वॉर बिटवीन टू राइवल विलेजेस की ओर ज्यादा चली जाती है, जबकि कहानी में अगर गांव के रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों की कुछ और परतें दिखाई जाती तो नैरेटिव में इमोशनल डेप्थ और बढ़ सकती थी। लेकिन इसके बावजूद नाओमी द वांचो वॉरियर को केवल एक वॉर बेस्ड फिल्म के रूप में देखना शायद इसके दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज

करना होगा। यह फिल्म हमें वांचो कल्चर, ट्रेडिशंस, कम्युनिटी लाइफ और इंडिजिनस आइडेंटिटी की एक झलक देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी जर्नी के पीछे एक दशक का इंतजार, मेहनत और परसिवरेंस है। 18 सितंबर को जब यह फिल्म आखिरकार बड़े पर्दे पर पहुंची, तो वह सिर्फ एक रिलीज नहीं थी, बल्कि ऐसे लंबे सफर का मुकाम था जिसका इंतजार फिल्म से जुड़े लोगों और दर्शकों ने वर्षों तक किया था। तो कुल मिलाकर नाउमे द वांचो वॉरियर के सिनेमाटोग्राफी वीएफएक्स प्रभावित करते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स कलाकारों की नेचुरल परफॉर्मेंसेस सराहनीय है और वांचो ट्रेडिशंस का सहज चित्रण फिल्म को अपनी अलग पहचान देता है। वही कहानी में अगर रोमांस, फैमिली इमोशंस और विलेज लाइफ को थोड़ा और विस्तार मिलता तो फिल्म का इमोशनल कनेक्ट और मजबूत हो सकता था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की इंडिजिनस कल्चर और स्पेशली वांचो इंडिजिनस कल्चर और लोकल स्टोरीज को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश के रूप में यह फिल्म निश्चित रूप से चर्चा की हकदार है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा बॉलीवुड अपडेट्स आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब वक्त हो चला है एक खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाने का।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि सेप्टेम्बर लेट मनी बन अकु तारीख होनी बार ए रूमा के वंचो टाइ का होवांग वांगना होवांग ए का हो पाई फाले मंचुई जामी खमे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए अनि थम

श्रोता दोस्तों वांछो श्रोताओं के समाचार के बाद अवगत हो चला हिंदी फिल्मी गानों को सुनने का आकाशवाणी के और 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी का ईटानगर FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़। और अब सुनिए अरुणाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता संदेश। श्रोताओं, 24 से लेकर 26 सितंबर 2026 के बीच ईटानगर और नाहरलगुन के 5 अस्पतालों में भूकंप एवं बहु आपदा आपातकालीन स्थिति पर आधारित अस्पताल मॉक एक्सरसाइज यानी आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पतालों की आपदा तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा विभिन्न बचाव एवं राहत एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत करना है। अभ्यास का कार्यक्रम इस प्रकार है। 24 सितंबर 2026 सुबह लगभग 10 बजे आरके मिशन अस्पताल, दोपहर लगभग 2 बजे हेमा अस्पताल, 25 सितंबर 2026 सुबह लगभग 10 बजे हरमिन अस्पताल और दोपहर लगभग 2 बजे नीबा अस्पताल में, 26 सितंबर 2026 सुबह लगभग 11 बजे का समय रहेगा ट्रीम्स नाहरलगुन के लिए। इस अभ्यास के दौरान भूकंप, बड़ी संख्या में घायल लोगों की स्थिति, आग लगने की घटना, खोज एवं बचाव, सुरक्षित निकासी तथा सामूहिक हताहत प्रबंधन जैसी आपातकालीन परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से अभ्यास किया जाएगा। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भाग लेंगी। यह पूरा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में आयोजित किया जाएगा। आम जनता, मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए विशेष सूचना, यदि अभ्यास के दौरान आपको सायरन, बचाव दल, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन गतिविधियां दिखाई दे तो कृपया घबराए नहीं, यह एक पूर्व नियोजित मॉक एक्सरसाइज है, वास्तविक आपदा नहीं। मरीजों और उनके परिजनों से अनुरोध है कि वे अस्पताल प्रशासन तथा अभ्यास में शामिल अधिकारियों एवं बचाव दलों के निर्देशों का पालन करें, उनके साथ पूरा सहयोग करें। याद रखिए, आपदा आने का इंतजार नहीं, आपदा से निपटने की तैयारी जरूरी है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना है। जनहित में जारी आपदा प्रबंधन विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार, अरुण FM आकाशवाणी ईटानगर की ओर से यही आप सबसे गुजारिश है कि सुरक्षित रहे, सजग रहे और सहयोग करें। तो श्रोता दोस्तों, हिंदी फिल्मी गानों का सफर जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले ठीक 4:05 तक आप सुन पाएंगे ईदू मिशमी समाचार। 4:05 पर हम फिर से लौट कर आएंगे हिंदी फिल्मी गानों के साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए, छोड़े जाते हुए इस गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर सिलापुजी जोहोखनी मानोले निमाचनी इतनी इदुमिश्मी प्रोग्राम है तांदो आहोजे हमजी लागे जे जुजुम्बे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में उन्हीं इंडिया मची अब हम कपियो मंगा लोकेशन में बुआ नि लेन अब मची रोजगार मेला अकागा ही बामा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मन है अजार बा मंगा हो खगा आयु उम्रो अपॉइंटमेंट आजोपा आप यहाँ का खा अली ओदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में चीचा गाने ला में अतिकची आयु उदो ने जो कालया आरो गबने अत्याउताची आलम्रो गो अभियाम युगा गबने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट में अजित हागा जिदा लगा का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में उन्हीं में दिल्ली मने अमोरा बु गबने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनामिक लने प्रोग्राम अकाही बा आयो पहागा ने ला में इचा जी ट्वेंटी मा इंडिया में होने अहा पेरिस मने कॉप अन्योख समिट मा काजू जी जो ने ला लापू में जो ने गा लदा लगा खा अली ओदा इंडिया में लिबचा इनु होलुनी कोकोमा अमोरा बोमा एटा खमा जो ने गा लदा आमा अचानद है रिन्यूएबल एनर्जी गबामा जोगा जी इचा रिन्यूएबल एनर्जी में होने अमोरा बोमा अरुंदान दो बाओदा लगा खा बुआनीहू लेना बाओ मची एशियन गेम्स ऐसा कने नो तारो है इतनी ने जापान मची पालोमा मिजुहो स्टेडियम मने टाउ पगम बने इगा माचा लपुची ई पी लिबा टाउ गई बाओ खा इचा एशियन गेम्स मा कपियो कासो एटाक है टाउ मगमा कपियो मंगा कंट्रीज मची एजेंट बाहो का लू एथलीट्स में टाउ मगा बाओ खा आमा इंडिया मची माओ मंगा एथलीट्स आलम्रो में असो मंगा एटाक है टाउ मगमा टाउ गई बाओ खा आमा इतनीची ओपनिंग सेरेमनी मा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मानु बाकर ने पवन शरवत में इंडिया मची असला घने अगुगाई बाओ खा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में सोशल मीडिया मा जुगा ने अतिकाची आलम्रो गो इगा वे मोगा लपुची जियासु हुमा ने इनुमा लेबा अनि निगबा अंजो डिस्ट्रिक्ट मची धोंग अतिकोमा सेकेंड एडिशन सनराइज फेस्टिवल अखागाई बाओमा अगुते ने अथुजी ना लगा खा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन में भुनी मई दिल्ली मा अनि निगबा ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंसिंग इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स ए विकसित भारत लाने कॉन्फ्रेंस अकाही बामा अगुगा ने ला में अरुणाचल प्रदेश मा है अंगोया आयो तगा ने जो मोह सीजन है चौगा अली ओदा अलम्रो में भी अगमी ओदा ने ए आंदे खागा ने गवर्नमेंट ची प्रोजेक्ट दो लिम्बो अतिकमा जोगा में पेया अमे भाला भी एगादा अली चांदो अथुग ने अरुणाचल प्रदेश अतिका गबा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अमे हाजी ना लगा खा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ए पी एस एस बी में अहा कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एज अ कने ने अन्य तहो अकाही बमा रिजल्ट है बोनी लाहोगा अमा मालू असो हो खिनी इमो अलम्बो में शाकुरी चिगा ही बखा अमा असो हो तहो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड कासो कानी लाइब्रेरियन अले ओदा मालोलू खगे अपर डिविजन क्लर्क यू डी सी चिगा ही बखा आमा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में सोशल मीडिया गेमा जुगा ने आया शाकुरी चिगा ही बालम्रो कॉन्ग्रेचुलेशन सांगा खा अरुणाचल प्रदेश मची एजुकेशन मिनिस्टर पासांग दोर्जी सोना में बुनी नागालैंड मची चमू के देमा मा अनी नि गबने एजुकेशन कॉन्क्लेव एज कने ना न्या ताहो अकागा मा अगुगने सोशल मीडिया गेमा जुगाने पीडी सोना में ला में आता तिकाची स्टेक होल्डर्स कबाने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एन ई पी एज कने नानी हूँ पाने अखापो चिपो मा चिजगा जिदा लगा खा Yako Lumbuchi cricket Tama Magama Asian Games Ma and Tene Jiga champion Indian Women cricket team me quarter final ma Japan go Ilu wicket mane anetene anayanama Japan machi nishin mane Bangladesh go semi final Tangai Bauka Putanja ho Olig Mondobai
2: HBMB Chipo Asawe Auda Kaga

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

ईदू मिश्री श्रोताओं के समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं सफर में हिंदी फिल्मी गानों के। ये आकाशवाणी का ईटानगर का एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम है और हमारी दूसरी प्रसारण सभा में मैं हूं आप सबके साथ सफर में आरजे नूरी। चलिए सफर को आगे जारी रखते हैं और सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा का यह खूबसूरत पड़ाव यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का यह साथ, हमारी बातें और प्यारी प्यारे गीत आपके दिल में मुस्कान और सुकून की कुछ खूबसूरत यादें छोड़ गए होंगे। और अब हमारी तीसरी प्रसारण सभा के सुनहरे सफर को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आपके अपने आरजे साजिद, जो अपने शानदार तरीके से और अंदाज से बेहतरीन बना देंगे आपका खुशनुमा ये शाम। तो कहीं जाएगा नहीं, जुड़े रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रसारण अधिकारी गैर एतिर तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और मुझे यानी आरजे नूरी को दीजिए इजाजत। सुनते रहे, आपका दिन शुभ हो।
1: इरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा दुबारा करो सितंबर जिलिंग रंग सरत का उतारिक अराउ रंग जा बलई बजी खू मिनट थोड़ जा मसो तंसा प्रोग्राम तफंग राय रुंगनानो कोहंग वासिम केंग नांग रो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो मचोसा लखू रोजगार मेला नंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लम हजत बगयोंग राशि अन्या

0: katunguru te social media post kutunang pro conclave nang NEP 2020 sehe kamung nai region nang areng kamung tam per northeast region wang education leader nai stakeholder hengra rafan chentungurau education minister PD sonar ru te japan nang asian games nang ninap cricket nang indian women's team ro bangladesh team jamatu chi match porang na sai baji kusum sai minute ma phang chi aro meteorological center itanagar mci ro vera rungrang kutanang arunachal pradesh nang papampare upper siang dibang valley anjao lohit kurungkume district ma yellow alert kut aro Pada district tam bang akhau jaga nang rang jenci mana jangu ruk tu rungrang itu nang thumre.
1: Macam namre HIV rak kamung nang aring rungrang tajen. HIV rak sa kamung nang ahu metegru jua day. Mai pa akawong jangre. Mai yung han bang HIV rak menai. Mai jam ma tongwo lau kaumara prama HIV ragun mai bochim aking strings kaumu rakpo reling renang ma arau mayung hanwang rakpo nausa hanatak reling rakchi prama taipo jasyek po mai jam ma tongang lau nai jak lalu lau ra rakhui pam lau nai adam ma faksa arau HIV rakpo reling mu prama Surong lo kagroman po HIV rak po relingu HIV rak po homoy nang karay rawre kuthang mo acha tomay rakci araw HIV rak mo hadrang jamu araw doktor mo karay rang rar rasan pan rang jamu per mo ere rak kam nang nari mo taghay mo National Helpline number 1097 nang phone rang rar Iraman po singmung wang may ma ahu rangtaan mong waraw Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ra kuta.
2: Dosto, agar nibhane ke ikchha dono taraf se ho to duniya ka koi bhi rishta kabhi nahi tootta. Hamare pyare shrota dosto, ek bar fir se swagat hai Akashvani Ganagar Kendra ke Arun FM 103.1 MHz pe. अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपके अपने आरजे नूरी के साथ और अब आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद गबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे शाम को टहलने के फायदे के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की जीवन पर काफी भारी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अनहेल्दी खान पान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। हेल्थ एक्सपर्ट सेहतमंद रहने के लिए वॉक करने की सलाह देते हैं। जी हाँ, मॉर्निंग वॉक सेहत के फिटनेस के लिए फायदेमंद है। ऐसा करने से शरीर तो फिट रहता ही है, साथ ही मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव होता है। लेकिन शाम को टहलना भी काफी लाभकारी है। शाम को टहलने से स्लीप क्वालिटी में सुधार होता है, क्योंकि दिन में नेचुरल लाइट के संपर्क में आने से आपका शरीर शाम को मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करता है, जो आपके ब्रेन को संकेत देता है कि यह सोने का समय है। इसलिए शाम को बाहर टहलने से शरीर की नेचुरल सर्कैडियन रिदम को और मजबूत किया जा सकता है। इसके चलते रात को आरामदायक नींद हम ले पाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र की अरुण FM 103.1 MHz पे। चौंती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, शाम को टहलना यानी चलना एक कम प्रभाव वाला व्यायाम है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने, हार्ट को स्ट्रांग करने और ब्लड फ्लो में सुधार करने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार प्रतिदिन 15,000 कदम चलने से हृदय रोगों का खतरा कम होता है, क्योंकि पैदल जितना आप चलेंगे उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, शाम को टहलना तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है और शाम को जल्दी टहलना प्रभावी हो सकता है। काम या स्कूल में एक लंबे दिन के बाद बाहर टहलने से आपको तनाव कम करने और अपने दिमाग को शांत करने में मदद मिलती है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, गुड इवनिंग ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 मेगाहर्ट्स से। अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज़ और फिर नुक्ते श्रोताओं का समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज विश्व रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से कम। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत की यात्रा के वित्त पोषण विषय पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में आंशिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें

0: एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिसमें देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा है कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चल रहा है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम में एर्नाकुलम में 2 दिवसीय पर आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा है कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत से आधे से कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के

0: मैदानों और आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत की यात्रा के वित्त पोषण विषय पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन दिवस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में अनुदान के जरिए अलग प्रावधान किए जाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए राज्य के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, लंबे वर्षा ऋतु और कम कार्य अवधि के साथ साथ अधिक परिवहन लागत का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि इन कारणों से राज्य के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में परिचालन लागत अधिक है, साथ ही राज्य को बाहरी सहायता प्राप्त निधियों का भी अभाव है। हालांकि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हमेशा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि सरकार ने वेतन, पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध देनदारियों से भुगतान की भी चूक नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जो पूंजीगत व्यय और अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, संपर्क व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों से विस्तार के लिए निवेश कर रही है। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और शासन की इसी सोच के साथ सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की है। इनमें से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ये अधिकारियों से कहा गया है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले यह आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों की उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिसमें 20 से 40 महिलाएं भी शामिल, इससे प्रभावित है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में हुआ है। एशिया खेल में आज से 4 अक्टूबर तक ये खेल जारी रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया है कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि 1-1 न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व में सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष जोर दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagram. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 28th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. He said the government endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. The 28th Rozgar Mela was held at 45 locations across the country. PM Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today, Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. He said, India is rapidly working in areas like clean mobility and green hydrogen today. He highlighted that India's wind energy capacity has witnessed 3 times growth in the last 12 years. Mr. Modi emphasized that New India is also focusing on nuclear energy generation. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. President Draupadi Murmu has appointed 14 judicial officers as judges and additional judges of Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Karnataka High Courts. The Ministry of Law and Justice said that the appointments have been made after consultation with the Chief Justice of India. Besides, 5 judges were appointed as the additional judges of Delhi High Court, while 1 judge has been appointed for the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushala Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by 31st of December next year. Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister John Amen yesterday attended the inaugural day of the Conference on Financing India's Journey Towards a Viksit Bharat, organized by Ministry of Finance at Bharat Mandapam in New Delhi. The Deputy CM has sought for a separate provision for Arunachal Pradesh through a grant of special economic package, citing high cost index due to difficult terrains, long rainy seasons and short working seasons, along with

0: post External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India continues to support Nepal's recovery. Nepal faced devastating floods last month, disrupting life and property. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 started at Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. IST. Double Olympic medalist Manu Bhakkar and shot putter Tajinder Pal Singh Thur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 14th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete over 37 sports. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. लीजिए अब प्रस्तुत है नौबते श्रोताओं का कार्यक्रम.
2: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़वा रंगजा वन बंगा बाजी सानपो डनेरे नंगते प्रोग्राम चोतारन थजा सितंबर जांसी वाने खुद तारीख होने बज्जा थजा को बेकोई हन तेलियन तांग जामा थजा वक्त बोले देंगा थजा लो रोक निरंग रोजगार मेला दंगता को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मा रोक बंगा हाजत थे तोरंग यूथ सिनंग साकुरी अपॉइंटमेंट लेटर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मा फेंकोवा अरे रोजगार मेला को निंग थोता को डियक पमा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निंग का खत होरमें की पमा डियक वा यूथ से रंग मा अजाथम लंपो पिजो खुलीवन कोईरा ंग मा प्राइम मिनिस्टर लोजाब जो रेवा इंडिया मा पार कैपिटा कार्बन इमिशंस कंट्रीब्यूशन होने की पा डियक फंजा ग्लोबल एवरेज कुम को हाफ कवा तमिंग अन्य पिजो बा कंट्रीब्यूट बा होने की ंग मा प्राइम मिनिस्टर मोदी लोजाबिका Taja, New Delhi Nang, Future of Environment and Climate Dynamics Koko International Conference Ngontun, Luasik Konungma, Ngin Thotako, G20 Diahe, Paris Nang, COP21 Summit Ngontun Dangtiko, Chenchen Kam, Tamorakarwan Nang, Puntuminti Nginghe, Talang Morakarwanti, India Palolo Jaba, Atanghe Bangta, Dangwang Ama, Modi Lojabjo, Reva. ngale chuanta wa chipani khan ko environment rangma aja atham kam san hi jo lata hongmo kawanti ngama ate lojab jobing refa ngale clean mobility le green hydrogen rangma ming aja atham kam ba india ma lagiwa ni kijong ngama prime minister lojab jobing refa law rok ni rang asian games 2026 pa taja japan wa aichi nagoya thewa Paloma Mizuho Stadium ko ebang lomak ara Asian Games 2026 eto loming waka ko rok bli wanram rang sports rok engi kwantrang disciplines ngale chabli rok rok waniku medals rang jo kienpa eto loming waka ara Asian Games ko rok bli wan banga torang dia khewa chi haja torang khien lomte athletes se jo ekhon waka India pa ara Asian Games 2026 ko double Olympic medalist Manu Bhakkar le short put khen luamte Tajinder Pal Singh ni meja lampa esen waka ara Asian Games 2026 pa October jang wanbli tarik to ko elom waka second edition rang Anjao district wa Dong the ko Sunrise Festival Dongming ko Chief Minister Pema Khandu ma nganga nang jo invite pa honika are jani rang festival damik pa december rok ram tarik pa ma bangla ma nepa january jang want tarik toko edanga deputy chief minister chona men maja thongwa finance ministry ma financing india's journey towards viksit bharat khoko conference ngontun new delhi wa bharat mandapam theko lotsita ko deputy chief minister chona men ming attend pa dangwa अरे कोंगिंग थोटा को स्टेट पर अजा थम कमका अलात थे डंगजुन को रोंगरुप फिंग थाप मिंग अचानजो डंगजुन को बाकी स्टेट से नंग लथाक थंगमा बेलेक मजो अरुणाचल प्रदेश नंग स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर मामलों से वें को रंग मेन लोजाब जो रेवा रंग कमिंगा स्टेट पर अरो थे अपे अलात नाले हाई कोस्ट जगा पजो मदाए कमिंग ngunako budget management pa asantan tham joba solek waniki ngale government sakuri motte henang thaning dor moa salaries le pension ngale lihan liabilities seming chini tang bang pa la chotuk thang ma jo सोलेवनी की गमा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, घड़ी की सुई पर अब वक्त हो चला है 5:30 का और आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम की महफिल। दिन भर की भाग दौड़ और वो काम के बाद ढेर सारे स्ट्रेस होने के बाद इन सब से थोड़ा ब्रेक लेने का मन करता है। मन करता है कि कानों में कुछ ऐसे गाने बजें जो दिल को सुकून दें,

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी घड़ियां आती हैं जब सब कुछ रुका रुका लगता है, मंजिल पास लगती है पर लगता है वक्त बहुत धीरे चल रहा है। दिल करता है बस भाग कर अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाएं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़, ये शोर शराबा, लोगों की बातें, इन सब के बीच कभी कभी हम खुद से ही अलग हो जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, कुछ बातें ऐसी होती है जो जुबां पर आने के लिए तरसती है, पर वो होंठ तक आते आते बस खामोश हो जाती है। और सच कहूं तो कभी कभी ये खामोशियां ही सब कुछ कह जाती है जो लफ्ज नहीं कह पाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी का नगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, प्यार ना बड़ी अजीब चीज़ है। जब ये होता है तो पूरी दुनिया एकदम सी थम सी जाती है। ऐसा लगता है कि वक्त वहीं रुक गया हो जहाँ आपने अपने किसी खास के साथ टाइम दिया। और जब बात ऐसे ही किसी हसीन एहसास की हो तो एक गाना है जो हमारे दिल के सबसे करीब है। उसकी हर एक लाइन जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह सामने आ जाती है। तो चलिए आइए सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz से दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 MHz पे, चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होने या ना होने से पूरा दिन बदल जाता है। उनके बिना चाय का एक कप भी अधूरा लगता है, और ये सॉन्ग भी वैसे ही है।

आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हम सबको इंतजार रहता है, सैटरडे का। दोस्तों, चाहे आपको क्लब में डांस फ्लोर पे आग लगानी हो या फिर घर पे ही जो है चिल करना हो, तो मूड एकदम सेट होना चाहिए। इसलिए ये सॉन्ग सुनना बहुत जरूरी है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पेशल हिंदी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार।

0: HIV kinam abalok menggam gapanam arorupa moye hunam lagangko takamam lukan lambidum.
1: HIV kina amilok iya lamulok kinam de ayon hierung atirung kenno himapa mimamilok edbohila amur abo himilok HIV kinam de ayon hidu. HIV kinam de bejuatelkeng midumanyam nengmilok ayon hiladung delok anade HIV gedung imilok kolokom ayon hiladung.
0: Idokom menggap galangka dobo dagbo hikolok ala khoruk hikolok gomruk hikolok dobote bo hikolok delo tarhungu bungkolok HIV kinam h byaggong madung
1: HIV kinam itum hidopa potarlo manapa kade hilangka dem imulo denam pa ye langolo kampo pa ye nam ye ladu HIV kinam pasopa aimang kinam hok lagangam kenpu pa aidung delo Kinamum arorupa kangutpa aidu. Lalo SIV kina amiam luke loreng kapa aimang. SIV kinam hok legangam aipa kenpamena kedinga National AIDS Helpline 1097 lo irukhila legangam tannom hilangka. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Director Health Service Naharlaguna bana legangam mungga botola agamum bikanden botu.
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे लकी अली के बारे में, जिनका जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ था। मशहूर सिंगर का आज जन्मदिन है। उनका असली नाम मकसूद अली है। एक सिंगर होने के अलावा लकी अली की पहचान गीतकार और संगीतकार के रूप में भी है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, साल 1996 में लकी अली ने अपना एल्बम सुनो लाए थे, जिसका गाना ओ सनम बहुत पॉपुलर हुआ। वही बॉलीवुड में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी शुरुआत ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है, जो 2000 में रिलीज हुई थी, के गाने ना तुम जानो ना हम से की थी। उन्होंने अपनी पहचान गोरी तेरी आंखें, तन्हाई और अनजाही राहों में जैसे गानों से भी बनाई। साल 2015 में आई रणबीर कपूर की फिल्म तमाशा के बाद उन्होंने बॉलीवुड में गाना बंद कर दिया था।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जहां हम बात कर रहे हैं लकी अली के बारे में। लकी अली ने सालों पहले बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड छोड़ने की वजह का खुलासा किया था। बॉलीवुड पर भड़कते हुए लकी ने कहा था, इस जगह में बदतमीजी बहुत है। उन्होंने आगे कहा था कि बॉलीवुड में अब बदलाव आ गया है, जो फिल्में अब बन रही हैं उनसे सीखने के लिए कुछ नहीं। आज की फिल्में समाज पर गलत असर डाल रही हैं। मेरा मानना है कि फिल्मों में धैर्य को कम और लालच को ज्यादा दिखाया जाता है।
0: सुर में गाना सीखिए

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, लकी अली ने अपनी इस लड़ाई के लिए सीधे तौर पर कभी भी भूषण कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन यह विवाद स्पष्ट रूप से भूषण कुमार के नेतृत्व वाली टी सीरीज पर केंद्रित था। फिर उसी साल लकी के पिता महमूद का भी निधन हो गया, जिससे वह काफी टूट गए थे। दोस्तों, जब महमूद का निधन हुआ तब लकी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में थे। वह अमेरिका में अपने इलाज के लिए गए थे। पिता के निधन के बाद लकी ने मुंबई क्या छोड़ा, वह बॉलीवुड से ही जुदा हो गए। आजकल लकी उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें वह जाने क्या ढूंढता है या मेरा दिल गाते नजर आते हैं।

시 아카디 이다르 보고마 슈트 폴가 알로루르 고라 로코코나 나나포아 오룸가 카네바지 레마 타르멜음 알바멜라 스롱가 니시 아곰 아람 모렌지 그레마 타르가 다타 초바 스롱가 시포엠 타파 초레 잡지란 시 나르마 아곰 허레 부바블라 코지가 오룸바캄 로 쳄니나네 로지가 메라 함 비디오 컨퍼런싱 목리 클라소 오스 오스 토르카르가 디파르멘테 그드 로라 오르나제션 그드 로 니티바 니지리아파 그드 네사코리 로 애폰먼트 지그 나나 포타 함 유둠 창 고라 아켄 하자르 그드 감 프로미스탄 담 나렌드르 모디 예 실로 호렌지 쿠마카 멘파토 오케 모그가 니지리아파 그드 네 리고멘고 함 알바리파 멘파 모토 쿠바 프리트레데 에그리멘트 함 토렌지타 푸쿠나마 함라 너마 모디 예 자파타 쿠마 옥소케 프리트레데 에그리멘트 몰렌지남 로케 니트네 남테 로 리고멘고 함 알바 리밤파밤 나데 발라 모그가 마르케트 로 코르파메리네 그드가 레가바 알가 그리크 라 니파야파 그드 네 니트네 남테 로 코르렌 다글란 카나 나데 쿠바 리르쿠나 함라 너마 모디 예 자파타 푸쿠 ओके मोकलो का अलब चेने पाने निपाया पा गुद हची गो दोगो आरा लो रिगो मेंगो हम अलब रिपा में पा ललारी कने हम ला पुलो मिस्तार या जापा ताप को बहन तो जापान मोक अची नागोया ग पोलामा मिचुहो स्टेडियम लो चेमनियान एशियन गेम्स 2026 हम रेब गम दुकुब शिलो ओपनिंग सेरेमनी में नाम हम मोको जिरकुन हम में पातो ओक्सोक एशियन गेम्स हम शिलो गोल क रेब गला पुरा पोल ग अलो लुइप नन तोल गोब रित गत तक आरा लोसो चेम्प गोला ओम स्पोर्ट्स में नाम ला अचम कन गोला अकेन डिसिप्लिन ओक चिमरु एप चांक गोला कोना मेडल इवेंट लगा लिकाम मेश न्यार कुने खम में पाथा दो ओखो चेंप गोला आंग मोक ग्लोक रे गोला अकेन हजार एथलीट से में नाम तेला दोला हम रिका मेश न्यार कुने सो भारत ह चिमुम गोला एप स्पोर्ट्स में नाम लो रिका में से रेकने ओक ओलंपिक मेडल हम लुंगु गोब पाने मनु बाकर ला उलु हम अलब नुलक याने तजिंदार पाले सिंह बनि भारत ग निगद हम उबु गलो ब इंग चाग ग दुकुन में खम में पाथा दो ओक्सो के एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी हम मोकोजिमा तित्ति ग आलो कोना नानगे इंचो लोक खेला तोला मेगनम रेब गप कुमा ओकसिनी ग

0: Kemni nani Asian Games lo nitiba mixed martial art MMA menam nela taekwondo pedal surfing BMX freestyle ok virtual taekwondo ham reb gamrik ne kham men pa tha to anjoy district ga dong ga da lo lungnan sunrise festival ham mana ga ta ke lo alba apa bapa nyat kuka hamla nyice nyet mele ne chi prista ndar me pema kantu ye nyin tom du puna hamla mem pa do ok ar kum chi ham do ni la la ga hu ka chok ku da lo ni te ne ni ga le ga ba ye mo la hir chi ar ba nir men so men la mana ga de ku de hik ne le ku lo ri ga pa ga ku nam ham he ka ka ka nyat kuka hamla ni ga de ne ndar me kantu ye social media la force mul ga gri la jap ta pu ku na ma ok festival ham alo luni goba mana denam ham sok arne ga rel fol ga alo chumum nan tol ga lala hek la 2027 kenyi ga rat fol ga alo loke nan tol goba mana gata tak dukun me ham na mem pa tha to nol shini shi pui shi ma khas wani etano phukum lok thal do nya to nyitne delhi ga bharat manda pa ma lo minister of finance ga financing india journey toward bishit bharat ago lo conference ga ba ga mor ga nya al ho moko ji klo arunachal pradesh state ga deputy chief minister dab chona me ni to pa da pa ming pukna ma khan mem fa to o ka muid isle le ba nam le ga ba la ni do ha pol tu tu ya ne golo ro huluk ji ba kunam le ga ba o ka kudu kam re ga na na alo ha yud magri k la donam tinam la ki yu ku yara ga ham ado alba bagri kunam lega ba dor dam ha kai dukne sok lega ba special economic package go grant ji gri kala arunachal pradesh state ga lega ba provision ham os go ba mabak nin jilap ka ham la deputy chief minister ya japata kum ba ham to arunachal pradesh staff selection board ga combined graduate level examination 2026 ji go kunam ga result ham mor ga nya alho jabab ji kula so chimri aken chimungula kona kedi dete gud kha sakori ham panya pukur ba khar mem pa do ok sakori ham pane ni chimungula ak gud ne personal assistant stenographer gr 3 lo ni dum eni gon ham librarian ok ni dum chimri aken gola aken gon ham udc lo muji nyar kuna oka soka sakori pana khedidete gudne alba me sak kuna khamla pangnam agong kham chief minister darma pema khandu ye social media lo first mul la jablik ji greek la soka ni gud se nitne nam te lok nu bul gari go mengo kham public lega ba remen rep ji ge kun pa me sak kuna khamla japat ap kum ba kham to इन कुन ग एशियन गेम्स चैंपियनशिप हम पान भारत वुमेन क्रिकेट टीम गद ख आर ने जापान ग निशिन ग दा लो सेमी फाइनल हम बांग्लादेश ग आरा लो थिका मिश्री कने ओख सोक मैच हम अलोग रे बाजे हम चुम मिनट गोब रे लोक थिका मिश्री रेब कुन हम मेन पा दो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग पापुम पार ला अपार सियांग दिवांग वैली अंजोय लोहित ओक कुरुंकुमा डिस्ट्रिक्ट ने येलो अलर्ट ब ईटानगर ग मेट्रोलॉजिकल सेंटर ह जाबक जी ग्री क्लासोक डिस्ट्रिक्ट तेलो दुगुम दोरा ग आजन ब निदो ह दुक्त अलब हुरुक जिर कुन हम ला जापा ताप कु ब हम तो कसरुंग निशि पुय ह बो
1: सी तगप से आगम गो मुले आकाशवाणी ईटानगर इरकुम लोग सो पुईसा मलिन जदन मुलु निमले तोलु गा भबने नियम नेगा को अन्योम अक्षिर गा बे एचआईवी ला एड्स ग पागो समनिंग चेंदो एचआईवी एड्स अलमान बो एचएल अब सुतल सो एचिन बो सम एचिनम समनुले बोस दुब्रीमा पान मे सो एचसीएम यो कम चिदा पाहल सो निंग निव्यार सितान हेल दो मादने नुने सम आल जब चेन दो दुब्रीपा सम चेन दो दुब्री नाम सीएम यो कम नुले चेन दो बोलो सो एच पागो समनुले आयाम काल चेन पाल दो बोलो कम नुन सो एच वो निंग दो जकम सो एच चमनुल अन्याम सिर दुब जितान ने सी कोई को सिर दुब जितान ओगे एच एच आई बी ला एस सी ओगुम का जित
2: Thank you. tagap sa agam go tarato all new youth association anya ham sego kunam anyu chang go ba rik nam so golden jubilee celebration 2026 ham sok arne ga fra pol ga alo loken nan tol ga lala hik la alo lur ko la long nan tol go ba itanagar ga indira gandhi park lo so nisi imik lo alba sego ge ge chon ge de na pagnam amen ham ji ge rik

0: मनोज पाठक।
1: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग ढाई दशक कहें, तीन दशक कहें, तीन दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद मनोज जी।
1: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं

0: उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
1: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्यधारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
0: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है?
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
0: जी।
2: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं, और अलग अलग योजनाओं के तहत, और जिस विशेष बात रखी जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रह रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं, और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।

0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
0: जी,
1: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहां की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
0: जी
1: उसको कर रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है, जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है, तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
0: शुमाय, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
2: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
0: जी,
2: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचने एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला, इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जैसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारी स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो था पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया, और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये
0: जी।
2: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया, सिंपल योजना है लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए
0: जी। बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर केवी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो योजनाएं उतरने लगे, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
1: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे
0: जी,
1: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा जो सरकारी

0: तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा,
1: जी
0: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन हुआ चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार
1: जी
0: मोबाइल,
1: जी जी
0: तीनों को
1: जी
0: जोड़ के आपने,
1: जी
0: तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे अगर आप कभी भी देखें, जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के,
1: जी
0: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एंकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है।
1: जी जी
0: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए
1: जी जी
0: पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें यूपीआई क्यूआर कोड का जो इस्तेमाल होने लगा
1: जी
0: भीम ऐप
1: जी
0: के जरिए
1: जी जी
0: तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए,
1: जी
0: शुरुआत में इसके काफी आलोचना भी हुई आपको याद होगा।
1: अच्छी
0: अच्छा, आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता।
1: जी
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास
1: जी
0: भी
1: जी
0: क्यूआर कोड है।
1: जी
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से आप शुभ हुए, जो कि आर्थिक विशेष से ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बाकायदा पता लगेगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीआई
1: जी
0: को
1: जी
0: लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है। अब
1: जी
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी
1: जी
0: को
1: जी जी
0: हिसाब नहीं होता था।
1: जी
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, डीबीटी किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को, यानी काला धन सफेद धन, धन धन है लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा, और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें डीबीटी कैसे कह ले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ। और एक बड़ी अच्छी बात के भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं। किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
2: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखें सीएजी का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है, हर साल का सीएजी का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको भी आप एक ट्रिनिटी
1: जी
2: कह सकते हैं,
1: जी
2: बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडिल मैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और
1: जी
2: इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 7 ट्रिलियन हो जाएगा और उस जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपये इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जैसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी, ये जनधन आधार योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस, एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा, हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी
2: उस तरह से वो पे, तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी

0: सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं, तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
1: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज बदली है। फिर भी 40% के आसपास मान के चलिए, 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से। जो सुबह भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
0: जी,
1: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखें स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरा परिवार का सोचती है, ये नहीं कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर ये समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह के कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच,
0: जी,
1: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कर कि लक्ष्य आधा सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारी जैसे बात हो रही थी कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करे। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाए, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक स्वच्छ पानी और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है। ठीक है, विकास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा, वो क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है।
0: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गाँव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनके तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्थाएं करना वो मुश्किल था, क्योंकि एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते हैं महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वे आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
0: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए
0: जी।
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है जी।
0: श्रोताओं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं बुनियादी परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहाँ जाना कठिन था अब वहाँ सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं, यानी देशी पर्यटन को

0: बढ़ावा देने की, और जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
1: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास की और कार्यक्रम में और उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की जो पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है।
0: जी जी जी।
1: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है वो भी, और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा है आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब समग्रित करके कर रहे हैं और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप वो सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप, और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दीजिए, कई सारे टाउन टीयर 2 सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल है, जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं
0: जी,
1: कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ है। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
0: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत
0: जी।
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगह में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक, जिसे कहते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी, जिसे कहते हैं, फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा, जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन स्रोत इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में
0: जी जी,
2: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफिस करने के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों के आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उन्हें समा चुका है। यही है स्कीम्स के, जिसे कहते हैं हम, सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्यक्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स की सबसे बड़ा खूबी, कि गवर्नमेंट के जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस इज

0: पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारी स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी, जिसे कहते मैं कहूंगा फेज चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ, या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह, बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में, उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज, जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं, जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए, चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाए,
1: जी
2: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकास विकसित राष्ट्र बनना है, और उसके लिए अग्रसर है। एक लक्ष्य सादा है, 2047 तक जो 100 साल भारत का आजादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है। लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी, ये तो शुरुआत से, तो जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह
1: जी
2: लीजिएगा,
1: जी
2: पुरानी बात है। लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की और रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर। वो सामाजिक सोच, और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीजें हैं। तो वो विकास, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे हैं, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जिसे है कि लास्ट में, जैसे एक अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं, 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं,
1: जी जी
2: लेकिन
1: जी
2: अंत में जाके सब उस टेप को
1: जी जी
2: चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम। चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग को लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है, उसके लिए जो है, जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है,
1: जी जी
2: सिर्फ
1: जी
2: सोच ही बदलाव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो ये
1: बिल्कुल
2: सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है। जैसे मैंने कहा, अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए, तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल शुभमय, प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल के दाम बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई, हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ्स का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया, क्योंकि हम बड़ी विविधता से, चतुराई पूर्वक, समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहाँ हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं? आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इंप्लीमेंट हों और वो साल दर साल इंप्लीमेंट होते रहे, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
2: मनु जी, आपने जो बात कही बहुत अहम भी है, और इस पे देखिए, जैसे इससे पहले वाकई बात कही, सोच बदलने की बात है। और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है, आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता है, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, 3-4 चीजें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पे जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी, घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे हैं। लेकिन जब

0: आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें।
1: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 25 साल पर विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज़ का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल का। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है एक ऐसे दुनिया में उतर जाने का जहाँ वक्त जैसे वहीं थम सा गया, जहाँ हर एक सुर में एक कहानी है और हर एक बोल में किसी अपने की याद।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, लाइफ में कितनी ही चीजें हम भूल जाते हैं, वो सुबह सुबह कीज कहाँ रख दी, पासवर्ड क्या था, कल रात में क्या खाया था, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली जरूर हो जाती पर खत्म कभी नहीं होती।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों सुनते हैं वो गीत जो जबां पर चढ़ जाए और रूह में उतर जाए। पेश है इतना तो पसंद आ गई है एक काफिर हसीना।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। वो एहसास, वो निगाहें जो पर्दे के पीछे से भी दिल पे असर कर जाए, उनका मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए सुनते हैं ये 70s की दुनिया में मशहूर फिल्म महबूब की मेहंदी और रफ़ी साहब की वो रूहानी आवाज़ जो सीधे दिल को छू ले।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज है जो उम्र देखता है ना दायरा और ना ही कोई सरहद, लेकिन कभी कभी दिल में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ये मोहब्बत है क्या? इस सवाल का बड़ा ही प्यारा सा जवाब लेकर आई थी फिल्म 1971 की एक बेहद हसीन फिल्म महबूब की मेहंदी।

दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, ये हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से चौंती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक तीतांग जंग तथा तकनीकी अभियंता।

0: पत्रिका चित्र भारती।
1: सर्वेंट्स, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्की 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म

ब्रह्म युगम के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: ननगू एल्लरन्नु कंड्रे इष्ट अदक्के बैतिनि नानु दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होना क्या?
1: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
1: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा राके कन्फर्म आयतु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस अदक्के अवकाश इद्रु अवनन्नु मुगिसाकलिल्ला।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां।

0: ये था संपादकीय अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
1: हंस क्यों रहे हैं?
2: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिश्तेदार की नगर पोते मीर रोशन अली में।
1: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गई। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: चला है तेरा कमली, कमली बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है, अच्छा नाम है ना?
2: और बारह पुत्रा भाई
1: तू इधर रोज आती है? कल ना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
3: अच्छा मैं जाऊँ, बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना कमली।
4: क्या
1: तेरी कमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी आर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पाकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: मजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली? अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजा बाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए
1: जान
0: और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते

0: थे, और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन, के मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त, आंचल से क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी, और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है, और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है,
1: जी
0: मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब,
1: क्या
0: या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो
1: जी
0: गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्मेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दीना की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे
1: जी
0: गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी, और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट, के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब
1: चालू
0: लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब
1: वाह
0: ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना, तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी, के जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं,
1: जी
0: फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा
1: जरूर
0: मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे, आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे, दीदी
1: जी
0: को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था, बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहां, सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को
1: जी
0: बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था, एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर यह है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बस सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर, तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में, गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े वरना वही रहती
1: जी
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ।

0: मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
1: जी
0: एक
1: डॉक्टर,
0: खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ। क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली
1: क्या
0: औरत
1: बात।
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है।
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से

0: स्मृतिशेष स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमाइके डेमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन से इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसोजा को इंडोनेशिया की सुमाया से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने COP21 की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। भारत ने बाढ़ से उबर रहे नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने के खिलाफ चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि नया भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन पर्यावरण विशेषज्ञों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को एक साथ ला रहा है। इसमें 17 क्षेत्रों देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
2: आई थिंक क्लोज टू 8 कार्गो प्लेन्स हैव अराइव्ड।
3: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री देकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
2: द इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट द इश्यू ऑफ असिस्टेंस वेरी पॉजिटिव।
0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ था।

0: नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति में ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय ने जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, भू विज्ञान, जल विद्युत अवसंरचना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेषज्ञ शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावासों ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया। इनमें फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता, नागरिक भागीदारी और सामुदायिक सहभागिता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बहरीन में भारतीय दूतावास ने विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया। इसमें संस्कृति बहरीन के सदस्यों सहित प्रवासी भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्य शामिल हुए। 3 किलोमीटर की दौड़ के बाद विकसित भारत की सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई और स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। इस दौरान समुदाय के सदस्यों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान का भी आयोजन किया। संयुक्त अरब अमीरात में अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास के सदस्यों के साथ सेवा पर्व मनाया। भारतीय समुदाय ने इन कार्यक्रमों में एकता की भावना के साथ हिस्सा लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के जरिए विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने वाले नियोक्ताओं पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में $1,00,000 का शुल्क लगाए जाने के बाद आईटी कंपनियों के H-1B वीजा पंजीकरण में 92% की कमी आई है। श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क की अवधि बढ़ाने से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होगी, जबकि अमेरिकी कर्मचारियों और स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले ट्रैकबॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसिजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों की शुरुआत के अवसर पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने COP21 की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। भारत ने बाढ़ से उबर रहे नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने के खिलाफ चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग। This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights India's per capita carbon emissions is less than half the global average. Says India is the only G20 country to have fulfilled its COP21 commitments ahead of schedule. Nepal's finance minister. Nepal partnership. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions.
3: Carbon emission ki jimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
2: The Prime Minister highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule.
3: पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है. हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है. भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है.
2: Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order organized by the Research and Information System for Developing Countries, RIS, in New Delhi today, Dr. Wagle emphasized the importance of strengthening connectivity and economic cooperation and realizing the considerable potential that the two countries can achieve together. Speaking exclusively to Akashvani News, the Nepalese finance minister also stressed upon urgent pre-disaster investments, including early warning systems and resilient infrastructure to mitigate climate risks.
4: We need to do a much better job at instituting early warning systems, building resilient infrastructure, making sure that precautions are put in place and pre-disaster investments are made to protect people from inundation and flooding, etc., downstream. So these are all issues that existed in the past, but because of climate change, they're increasingly becoming more intense and more frequent. So we need to do a much better job on those issues.
2: Meanwhile, India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India continues to support Nepal's recovery. Nepal faced devastating floods last month, disrupting life and property. The Trump administration has tightened oversight of the H-1B visa program. The U.S. Departments of State, Labor and Homeland Security has been directed to scrutinize applications from employers with recent or planned layoffs of similarly situated U.S. workers. According to a White House fact sheet, President Donald Trump signed an